0: स्टेला स्टेला
1: दोबारा पा என்ன ஆச்சுங்க?
0: என்ன கொஞ்சம் தூக்குமா?
2: ஆ